मुल देवे की। बुलिया हीरे सस्ते मुल दे वेखे, लाल तकड़ी विच तुल दे वेखे, फुल पे

0: वाह जी,
1: आप भेटां दे संबंधां विच बंदिया रब नूं तू ठगी जाना
0: वाह जी वाह,
1: आप भेटां दे संबंधां विच बंदिया रब नूं तू ठगी जाना।

0: क्या बात है जी।
1: सोचिया ना दिल लाउन तू पहला अपना आप गवाउन तू पहला सोचिया ना दिल लाउन तू पहला अपना आप गवाउन तू पहला।

आखदे ने लोक ही काठो कहानिया हड़ एकता दा केड़ा सकेरो कहानिया हड़ एकता दा केड़ा सकेरो कहानिया हड़ एकता दा बन के कटामाए असी धरती बसनाए बन के कटामाए असी धरती बसनाए धोवांगे गवार जेड़े बिच पौण दे सिर बढ़ने ने सिर बढ़ने ने बीमी सदी दे रोण दे सिर बढ़ने ने सिर बढ़ने ने बीमी सदी दे रोण दे सिर बढ़ने ने वेलड़ा ने माण

है आया अज जो वीरा समान एवें गवाई। हथ है आया अज जो वीरा समान एवें गवाई। जोर दा हल्ला बोल के मित्रा संघर्ष अगे वधाई। जोर दा हल्ला बोल के मित्रा संघर्ष नू अगे वधाई। इकट्ठे

रख दे ख्याल पूरा सिरी ते कमीन दा, रख दे ख्याल पूरा सिरी ते कमीन दा, कातों है नी

अति रात तक करना आंदा, अति रात तक करना आंदा, सप्पां दियां सिरियां नप के सौंदा, अति रात तक करना आंदा, सप्पां दियां सिरियां नप के सौंदा।

चंद्रा जदो भी चढ़ आवे हाय वे मेरी जान सुकदी तकदियां रहंदियां ने रामा नित तेरियां है रामा नित तेरियां रो रो के पीछे गईयां अखां दोवें मेरियां वे अखां दोवें मेरियां तकदियां रहंदियां ने रामा नित तेरियां है रामा नित तेरियां रो रो के पीछे गईयां अखां दोवें मेरियां वे अखां दोवें मेरियां गल सुन दिल धारा तेनू कहना नी दुबारा गल सुन दिल तारा तेनू कहना नी दुबारा हूँ।

सुन तेरी हर जीत अच हार की परीत, सुन तेरी हर जीत अच हार की परीत, चोरा मेरे हड्डा नु नित खावे, हाए वे मेरी हाड़ा वे मेरी जान सुख दी, चन चंद्रा जदों भी चढ़ आवे, हाए वे मेरी जान सुख दी। धन्यवाद जी। दो गल्लां मैं होर कहनियां चाहवांगी जी, स्पैशली ह्यों साहब जी नूं। ਇਹ ਗੀਤ ਮੈਂ ਜੀ 2001 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ,

जड़ तो पुटते पिछे कौड़ी पजदा फिरदा पता न कोई पलदा ए जदो समय दा चक्कर चलदा ए जदो समय दा चक्कर चलदा ए लेखा लिखिया मेट न सकदा हो लेखा लिखिया मेट न सकदा की होना कल वेख न सकदा ता ही हिरदा दुखड़े चलदा ए जदों समय दा चक्कर चलदा ए जदों समय दा चक्कर चलदा ए शरणजीत प्रेम हुण विकदा ए शरणजीत हुण प्रेम विकदा ए नैणे हंजू सच लिखदा ए तुर दरगाहे लेखा देना तख्त हिजरे दा हलदा ए जदों समय दा चक्कर चलदा ए जदों समय दा चक्कर चलदा ए।

तेरे ते दा एहसान सारी जिंदगी मैं ढोआ, तेरे हासिया च हसा, तेरे रोने च रोआ।

मंजिल सारी कर लेनी एक दिन आपां दोवां। मैं तेरे हासे आच हसां, तेरे रोने आच रोवां।

0: धन्यवाद जी।
1: मैं अंत दे विच दुआबा रेडियो दे तीवें कवि दरबार दे विच पेश हुए सारे कवियां दा बहुत बहुत धन्यवादी हाँ जिन्हां ने अपने कीमती समयां दे विचों समां कढ के साडे दुआबा रेडियो दे श्रोतियां नूं नवाजिया ते आस करदे हाँ कि सदा ही वो इसे तरह सानूं सहयोग दिंदे रहणगे ते अंत दे विच हरवंश सिंह वालों एक बार फिर सारे श्रोतियां नूं ते शायर दोस्तां नूं आदाब नमस्कार सत श्री अकाल कुदरत खैर करे अलविदा प्यारे दोस्तों आमीन।